0: चपटे चपटे गोरे कायला मैला सैला ठैला नाचल कालो टोपी भदगौले मेरे सिरे मठल के को एक जोड़ी खुकुरी हेरा टल लटल के को
1: वाह
0: कालो टोपी भदगौले मेरे

0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो पियो ना
1: पियो ना लाई ची सो उठाओ हॉले
2: हॉले गर्मी मनाया फिर
1: रिफ्रेशमेंट पाप न्यूट्रिशन नीड
2: ची सो हॉले।

0: तुम ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं हो। कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

अब तपाई रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 लन्डनबाट प्रसारण हुने समाचारमूलक प्रस्तुति बीबीसी नेपाली सेवा सुन्नुहुनेछ। Details of all our services are

0: Pareto aki nagari pokra ma Metro City Hospital prali sirjanasok pokra le bibhinna kisimka bisheshagya chikitsak sewar ko upachar lyaeko jankari garaudachau.
1: Hamra sewaharu
0: heart jodne nasa tatha merudanda rog
1: general surgery sabai prakar ka operation sewa
0: mirgaula tatha mutra rog uro surgery
1: pet chhati mutu thyroid tatha madhumeha rog
0: neuro surgery sewa
1: bal rog
0: nak kan tatha ghati rog
1: manasik tatha snayu rog
0: prasuti tatha स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिभाइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: इन्डोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बॉडी चेकअप हेल्थ पैकेज
1: मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्राली पोखरा 8 सृजना चौक कास्की
0: फोन 061 572 648 572 849

वाचा मनसे प्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम राम राम।